0: सुरनार साधक सिद्ध सिख सेवंत तुरै तुर
1: आज जुगाद अना कला तारी तिन लोए अगम निगम उदरण जला जमे गुरु रविदास फिर थपयो परगामी तारण तारण
0: आगे अंतक बजे न

कृपा मुहे करो। एक साखी है, सुकेत मंडी दा राजा आया, कह लगा दसम पातशाह धन श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब जी नो मेरे ते कृपा करो। सामने एक सिख सी जो घोड़िया की लिद हटा के तबेले चो निकलिया सी, वो कवि भी सी, 52 कविया विचों। महाराज कहन लगे राजे नू तेनू ओदे वर्गा बना दिए। राजा कंबिया, कहन लगा महाराज तुसी कृपा करन लगे हो कि कहर करन लगे हो। महाराज ने धन्ना सिंह नू आवाज मारी, भाई धन्ना सिंह जी दर्शन दियो, आओ मेरे कोल। आ गए। कहन लगे भाई धन्ना सिंह जी कुछ मंग लो। धन्ना सिंह कहन लगा तुसी कृपा दे सागर हो, अगे कृपा कीती होर कृपा करो। महाराज कहन लगे तेन इस राजे वर्गा बना दिए। वो भी कहन लगे तुसी कृपा करन लगे हो कि कहर करन लगे हो, इहदे वर्ग। महाराज कहन लगे राजन तू इहदे वर्गा नहीं बनना चाहुंदा, ये तेरे वर्गा नहीं बनना चाहुंदा है, दोनों कहते भी कृपा कर। असल दात ओदा नाम है, ये ओनू दिंदा जिहदे ते ओह कृपा कर देवे। इस शब्द विच भी ये मंग मंगी है, ऐसी कृपा मोहे करो, तेरे बख्शिया ओहदे चरण होण ते मेरा मत्था लग जाए, साध संगत दी चरण धूड़ प्राप्त होए। ऐसी मंग इस शब्द विच

अंतर आत्मा दे नाल हुण मैं परमात्मा दे पिछे इंज लग पई आ जिवे कोई ढोल वजा के निशान लैके उस दे मगर पैंदे। इसे तरह मैं उस निरंकार दे पिछे हुण ओदे नाल मिल पई आ। मिलो गोपाल निशान बजाए। मैं दुनिया दी उस्तत निंदा तो उठ के दुनिया दी परवाह ना कर दी होई उस दे मगर लग पईआं। हुण मैनू ओ दाता मिल पिए मैनू किसे दी परवाह नहीं। भगत जी कहंदे ने

जे असी उस सवाल नू बदली करना चाहिए ते असी बदली करन दे समर्थ नहीं है, असी नहीं कर सकते। पत्थर दा सुभा जन्म जात तो कठोरता है। असी चाहिए कि पत्थर नू नरम कर दईए, मोम कर दईए, ये साडे वस की गल नहीं। हां असी उसनू पीस के बारीक जरूर कर सकते हां, उदी मिट्टी जरूर बना देंगे, पर जिस वक्त पीस के बारीक किया होया जो विशेष प्रकार का पत्थर सीमेंट का रूप धारण कर लैंदा, बारीक भावें कितना हो जाए पर उसनू फिर भी बचा बचा के रखना पैंदा कि इहदे उत्ते कोई चार बूंदा पानी दियां ना पै जान, इसनू किते सलाब ना लग जाए, इस करके उसनू ऐसी छां ते रखिया जांदा है जिथे उसनू किसी प्रकार की सैलाब ना लगे, क्योंकि ऐसा जिस वक्त भी उसनू थोड़ा जिहा सैलाब का असर होया, पानी का असर होया, मुड़ के उसने अपने उसे रूप में चले जाना है, मुड़ के फिर पत्थर बन जाना है। असी भावे पी के उसनू बारीक कर दिता पर जिस वक्त मुड़ उसनू अपना चांस लग्या, वह मुड़ के अपने उस रूप अंदर आ जाता, बल्कि अगे नालों भी सख्त बन जाएगा। फुल का सुभा है खुशबू देना, सुगंधी देना, सुंदरता बंडना। फुल भावें किसी गंदगी के ढेर दे क्यों ना पैदा हो जाए, कोलों की लंघन लगियां लंघन वाले ने जरूर वह सुगंधी देवेगा। मेरे जैसा मूर्ख आदमी उसने सवाल कर सकता है भी भलिया तू तो एक गंदगी के ढेर दे पैदा होया, तेरे कोलों खुशबू नहीं, तेरे कोलों तो बदबू आनी चाहिए है, क्योंकि गंदगी का ढेर है। पर आखते हैं क्योंकि फुल का एक जबानदरू सुभा है, जन्मजात का सुभा है, असी उसनू बदली नहीं कर सकते। वो उसे ढंग के नाल अपनी खुशबू भी वंडदा है, उसे ढंग के नाल अपनी सुंदरता भी वंडदा है। इसे तरह के नाल जानवरों के भी अपने सुभा हैं, वस्तुओं के अपने सुभा हैं। सप का जन्मजात तो एक सुभा

मेरी चिंता मिट गई है और मां ना मेनू डर आंदा है ते ना मेरे अंदर कोई चिंता आंदी, इसलिए कि तू मेरा सारिया थावां ते राखी करना, सारिया थावां ते तू मेरा राखा है, जे तू मेरे नाल है ते मैनू डर किसदा, मैनू डर किसदा, जे तू मेरे नाल है तो मैनू अग की करूगी, जे तू मेरे नाल है तो मैनू कोई विपता संसार दी सता नहीं सकती और मेरा कोई नुकसान और डरा धमका नहीं सकती मैनू, क्योंकि तू मेरा राखा है सारिया थावां ते। इसे लिए मालक सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने फरमाया, हजूर ने बड़े मान विच बड़े जोर विच किया कि एडा मेरा वाहिगुरु वड्डा है कि भावे मैं अग विच भावे मैं देग विच भावे तत्तियां रेतां सीस ते पईयां पर मैनू तत्ती वाह भी नहीं लगी। ये कौन कहेगा? खसम वाला, मालक वाला, गुरु वाला जिहड़ा है ही बेगुरा, वो कहेगा कि जिसनू कदी पिता दी गोद विच बैठन दा सुभाग समय नहीं प्राप्त होया, वो मान की कर सकता किसे ते। जिसने कदी पिता कोलो अमृती नहीं पीता, वो कह सकता है कि मेरा बापू मेरा पिता मेरे वास्ते आ करेगा? नहीं, नहीं कह सकेगा, उनू अपनी कमजोरी दा पता है। लेकिन सतगुरु सच्चा पातशाह बड़े तान नाल बड़े मान नाल हजूर फरमांदे ने, ताती वाओ न लाग गई पार ब्रह्म सरनाई, चौगिर्द हमारे रामकार दुख लगे न पाई, सतगुर पूरा पेटिया जिन बणत बनाई। राम नाम औखद दिया एकै लिव लाई, राख लिए तिन रखन हार सब व्याध मिटाई, कहो नानक कृपा पई प्रभ पए। उस मान विच आके तान विच आके असी कौन हां? सारे बच्चे सारा परिवार सतगुरु जी दा, बच्चे और बच्चियां परिवार मालिक सतगुरु, सतगुरु परिवार दा मालिक है साडा। तो असा ए तो कदी नहीं कहना कि असी सतगुरु दा परिवार हां, पर आपां पढ़ लईए जरूर, सारी संगत पढ़ियो, गुरु अर्जन देव अकाल पुरख की गोद विच ते सारी संगत गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह दे चरणा उते। फोटो ते इवें आएगी ना, पता ते इवें ही लगेगा ना, अकाल पुरख की गोद विच अकाल पुरख दे चरणा उते साहिब गुरु अर्जन देव सच्चा पातशाह और उन्हां दे चरणा उते आपां सारे। उस मान विच आके सतगुर सच्चे पातशाह हजूरी विच जिवें उन्होंने मान किया, आपां भी मान करिए ने सारे। तो बोलो सारे बीबियां उच्ची आवाज विच और वधे कंट्रोल विच, गलबात छोटी छोटी साडे को नहीं आनी चाहिए, क्योंकि सत्संग है, सचखंड है, वैकुंठ है, इसी महिमा का पारावार नहीं, जे असीं नहीं सोचांगे तो बेअदब होवांगे। सारे पढ़ियो।

मेरी सार करे हम हर के बालक। मुंह मंगा सोई देवदा हर पिता सुखदायक। अवगुण को न चितार दाम, अवगुण को न चितार दाम, गल सेती लायक। ज्ञान रास नाम तन सौंपियो नू इस सौदे लायक। सांझी गुरु नाल बहाले मैनू एक भाईवाली कराई। मेरे वाहिगुरु ने गुरु नानक सच्चे पातशाह नू मेरे नाल भाईवाल रला दिता, यानी साडा दोवां दा सांझा हो गया। उस विच सांझी गुरु नाल

मन बाचित सो लैसी। पिता कृपाल आज्ञा ए दीनी, बारक मुख मांगे सो देना। पिता कृपाल आज्ञा ए दीनी, बारक मुख

साहिब गुरु तेग बहादुर साहिब जी का दूजा शब्द भी मन दे प्रति है। पातशाह फरमान करते हैं

ज्योत स्वरूप है मन तू, मन तू ज्योत स्वरूप है मन तू, मन तू ज्योत स्वरूप है ज्योत स्वरूप है मन तू ज्योत स्वरूप।

रामकली बड़ा पुरातन अते प्रसिद्ध राग है। सवेर समय दे रागां विच इसका बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान है। एक करुणा दा राग है, पहला मूर्छना करता है, फिर करुणा रस नाल भरपूर कर देता है। रामकली जोगियां दा प्यारा राग है। गुरु महाराज जी ने रामकली राम मन वसिया ता बनिया सिगार, गुर के शब्द कमल विगसिया ता सौंपिया भगत भंडार लिख के इस राग दा मजमून स्पष्ट कर देता है। सिद्ध गोष्ट रामकली सद अनंत साहब दी बाणियां इस राग विच हन। ओंकार दी बाणी विच जो दक्षिणी तर्ज ते है, प्रभु दे करता पुरख होण दा विश्वास दृढ़ करवाया है। आनंद दी प्राप्ति लई आनंद साहब विच अध्यात्मक धार्मिक अते मनोविज्ञानिक उपदेश दिते हन। इस राग दे नादात्मक स्वरूप विच ऋषभ अते ध्यावत कोमल दोनों मध्यम अते दोनों निषाद लगते हैं, बाकी स्वर शुद्ध हैं। इस राग दे आरोह विच ऋषभ स्वर का त्याग किया जाता है। इसके गाउण का समा दिन का पहला पहर है। रामकली राग विच जिन्हां दो शब्दों का कीर्तन सरवण करोगे वह हैं, पहला रामकली राम मन वसिया ता बनिया सिगार, गुर कै शब्द कमल विकसिया ता सौंपिया भगत भंडार। ये गुरु अमरदास पिता का उच्चारण किया शब्द है। इस राग विच गा रहे हैं डॉक्टर गुरनाम सिंह जी। दूजा शब्द पंचम पातशाह गुरु अर्जन देव जी महाराज का है। कृपा करो दीन के दाते, मेरा गुण अवगुण ना बिचारो कोई। इसनू गा रहे हैं बीबी गीता कौर पेंटल जी। पहला शब्द सरवण करो, रामकली राम मन वसिया ता बनिया सिगार।

ग्रंथ साहब दे विच दर्ज है, एक गोजरी राग दे विच, एक देव गंधारी दे विच। तो दास जड़ा ये शब्द पढ़ रहे हैं राग देव गंधारी दे विच है, ते शब्दां विच भी वखरा वखरा फर्क। सो जड़े पोथी वेखदे हन गुरसिख, मैं उन्हां कोल बेनती करदा वो वर नारी है जड़ा देव गंधारी।